0: ना
1: छ सांप कुछ नहीं कराय सम सांप कुछ नहीं करत लिया वो अपने चल गई कुछ कराय त वो सब कुछ सांप बिखा थे निरत
0: बिखा हो कि नहीं हो कसी कति हिना का दाई
2: लिया नेपाल में पाँच दिन बिखा सांपन का विषय में सुन एक थोड़ा ठह गरे जा जो उन खास कह खा, रातिक समय में घर भीतर बैठ सेक ई कटला से निबाई फे सक तर कटलक पाछ दे भाग जो निचलना कह सास फैर जो निसेकना में से लक्व हो सक था और रठ डोम जो बड़ा रिसहा में हिक रठ निकर फाट फूले थ डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह खा, संध्या बिहान देख पर्स निकर कटल से फिर लक्व हो सक था वो और रठ कैली जाटक सांप निकर कटल कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत फिर पाती होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमारे देशक तरह सबको भूभाग में पा देना बगोपने न फुनका रहना बाघे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक था
3: बर्खा छा को अनाज बिजीना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना झूल बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाशिबेस सापन का दसाई का घटना झूल बिना कर लग पा जाए
4: झूल जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाख और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसा पट्टा लगाए लाख आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसंधान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउन का साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकारी गरौं।
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
8: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
8: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
9: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmctikapur@gmail.com।
10: रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गिरा संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको साधारण सभा सम्बन्धी जरूरी सूचना। रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गिरा संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टीकापुर कैलालीको पहिलो साधारण सभाको बैठकको गणपूरक संख्या नपुगी तपसिलको मिति स्थान र समयमा पुनः बस्ने भएकाले पुनः पार्षदज्यूहरूलाई आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात सहित यसै सूचनालाई आधार मानेर साधारण सभामा अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। साधारण सभा हुने मिति 2083 साल जेठ 10 गते आइतबार। कार्यक्रम हुने स्थान मूलकुला समितिको सभाहल समय बिहान 10 बजे। सम्पर्क नम्बर 0915615022। रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गिरा संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टीकापुर कैलाली।
7: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल।
11: अरे का करूरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का
7: मिस्तरान वर्जन औकन घर हेरो न कटा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुई ये गोंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए ता था पाए
10: यूपीबीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेष तहुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
12: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848143426।

0: से कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के वस्त पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बर थी राहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगलान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटी, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: टीकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा सञ्चालन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना।
4: टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका वडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, तपसिलको स्थान, मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। अस्तेरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 4 जेठ 5 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
3: विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 2 जेठ 6 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
4: ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 1 जेठ 7 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
3: एकनगर कार्य समितिको भवन वडा नम्बर 1 जेठ 8 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
4: नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी वडा नम्बर 6 जेठ 10 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
3: झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 9 जेठ 11 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
4: रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 3 जेठ 12 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
3: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।

0: एक वर्षे संस्था के संपूर्ण शीर्ष सदस्य महानुभावहरू र संस्था के शीर्ष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कै हिल फोटो सहित के परिचय खुल्ना कागजात के साथ उपस्थित हुइकलाग हार्दिक अनुरोध करती। मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार, समय बिहान के 8 बजे से संध्या 5 बजे सम्म। स्थान ओम प्यालेस धनगढ़ी कैलाली, नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली। विस्तृत जानकारी के लक्ष्य संपर्क नंबर 091-520-283।
1: यही 2083 वैशाख 2 गते देखि असार 7 गते सम्म देशैभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुँदैछ। उद्योग व्यापार व्यवसाय संघ संस्थामा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई गणनालाई सफल गर्न सम्बन्धित सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध छ। आर्थिक गणनामा सहभागी भए सरकारलाई सही विवरण दिनु प्रत्येक प्रतिष्ठान व्यवसायको कर्तव्य हो। तपाईले उपलब्ध गराएको पूर्ण र सही विवरणले नै देशको आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्दछ। तथ्याङ्क ऐन 2079 अनुसार तपाईका व्यक्तिगत तथा संस्थागत विवरणहरू पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनेछन्। यो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सबै मिलेर सफल पारौं। राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2082 अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना।
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800046774417।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उक्रन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से विपद के समय में नैसर्ना रोग संबंधी सेवा है प्राथमिकता देना पालिका के जोड़ आगामी वर्ष के नीति कार्यक्रम में समेटना पालिका के प्रमुख उपकरण की प्रतिबद्धता भजनी नगरपालिका में बाल बालिका संबंधी ऐन नहीं बनकी बाल मैत्री क्रियाकलाप करना समस्या हाली ऐन बनैना नगर प्रमुख केवल चौधरी के कहाई विद्यादेवी भंडारी के पार्टी सदस्य नवीकरण नहीं करना एमाले सचिवालय बैठक के निर्णय समस्याग्रस्त सहकारी के छोट बचतकर्ता उपकरण के रकम फिरता शुरू और विश्वकप क्रिकेट लीग 2 में स्कॉटलैंड ऊपर नेपाल के जीत। विपद के अवस्था में नैसर्ना रोग संबंधी सेवा हे पालिका के नीति तथा कार्यक्रम में समेटना सुरपश्चिम के 2 पालिका प्रमुख उग्र बटोईटियाल बाटै कैलाली के भजनी नगर पालिका के नगर प्रमुख केवल चौधरी हो कंचनपुर के लालझाड़ी गांवपालिका के अध्यक्ष निर्मला राणा से आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रममै नैसर्ना रोग संबंधी सेवा हे समावेश करना प्रतिबद्धता व्यक्त करले बाटै देशभरिक 2 पालिकामा नैसर्ना रोग के उपचार उत्थानशील परियोजना संचालन समेत नोभो नोडिक्स फाउण्डेशन की आर्थिक सहयोग तथा डेनिस रेडक्रस क्यानेडियन रेडक्रस हो अरुहुस विश्वविद्यालय के सहकार्यमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी के समन्वयमा परियोजना संचालनमा बा अब देशभर नैसर्ना रोग के जोखिम बढ़ती गेल बा हरेक घरमा नैसर्ना रोग जस्ते मुटु रोग मधुमेह क्यान्सर उच्च रक्तचाप दम तथा श्वास प्रश्वास के बेरमिया उग्र बढ़ती गेल बाटै विपद ओ नैसर्ना रोग के व्यवस्थापन गर्न सरकार फेन कार्यक्रम संचालन गर्तियाल बा प्रणाली प्याकेज बारेमा समेत जनप्रतिनिधि कर्मचारी ओ विपद व्यवस्थापन के काम गर्तिरलक संघ संस्थान समेत जानकारी देना आवश्यक रहलमा जोड़ दै गेल बा कैलाली के भजिन नगरपालिका के नगर प्रमुख केवल चौधरी पेनाल्टी प्याकेज के बारे में सचेतना जगैना आगामी वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम में समेटना बटोले बाटै भजनी बार से समेत नागरिक उपकरण बचैना सही से ध्यार नागरिक उपकरण के उच्च घर बनैना पालिका से सघैती रहल बा विस्थापित उपकरण में नागरिक के समेत धरना के लाख 18 ठो समेत उच्च घर बनाएल बा कलसे अब विस्थापित बैठना टोलमा समेत शेल्टर फे मा नैसर्ना रोग हे ध्यान में धरके सेवा देना हो आगामी वर्ष हरेक समुदाय में नैसर्ना रोग के बिरमयाकरण की खोज पड़ताल करना वहां के कहेबा कंचनपुर के लालझाड़ी गांवपालिका के अध्यक्ष निर्मला राणा परीक्षण के रूप में लालझाड़ी में कार्यक्रम संचालन करलकमा रेडक्रस से धन्यवाद दिलवाते अब के 2 महीना में ई परियोजना उरैचिरलकुर से कार्यक्रम हे नियंत्रणता कैदेना राणा देशभरिक पालिका हुकर लागू करस्ते क्लासे मजा हुई बटोईले बाटें भजनी नगर पालिका में बाल बालिका संबंधी ऐन नई बनलक ओर से बाल मैत्री पालिका में क्रियाकलाप करना समस्या होती रहल बा सरकार वाला हुकरा बटीटी बाटें विकास के लाख युवा ऐक्यबद्धता याद ढंगड़ी के आयोजना में भजनी नगर पालिका में बाल बालिका संबंधी नीति अब के आवश्यकता विषय संवाद कार्यक्रम में सहभागी हुक्रा ऐसिन बटोले खुआई संवाद कार्यक्रम में नगर प्रमुख केवल चौधरी ऐसिना यह आर्थिक वर्ष में बाल बालिका संबंधी पालिका स्तरीय एन लन्ना तैयारी होती रहल बटोले बाटै कानून अधिकृत पूर्ण प्रसाद जोशी भजनी नगर पालिका में आपतकालीन बाल उद्धार कोष संचालन कार्यविधि 2076 एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि करके 2 ठो बाल बालिका संबंधी कार्यविधि बनलक बटवागिलबा वहां पालिका की अब के प्रमुख आवश्यकता कलक बाल बालिका संबंधी एन लन्ना रहलक ओर से यमुना संघ संस्था हुकरन विज्ञता सहित के सहयोग कार्यपालनामा जोड़ दिले बाटै उपप्रमुख राजू तिरुवासे नगरपालिका बाल बालिका हकरण के तमाम क्षेत्र में काम करलसे फेन बाल संरक्षण संबंधी ऐन एकदम आवश्यक रहल बतवागिल बा। विधायन समिति के संयोजक शांति कुमारी चौधरी पालिका के अपुग ऐन नीति में आगामी दिन में फे काम करती जैन और एकरला संघ संस्था हुकुरा फे सहयोग करना बतोले बाटै महिला तथा बाल बालिका शाखा प्रमुख रिचु चुकाहा पालिकामा बाल क्लब गठन बाल संजाल कार्यविधि नैरलक बाल उद्धार कोष संचालन कार्यविधि रलसफेन बाल कोष संचालन के कार्यविधि नैरलक लगायत के समस्या रहल बतोले बाटै। वहाँ विक्रम सम्वत 2068 सम्म बाल मैत्री पालिका घोषणा गर्न लक्ष्य रलसफेन एकरला कानूनी अपर्याप्त रहल बतवागिल बा। सामाजिक अभियान त लक्ष्मी विकासे बाल बालिका हुकरण के दुर्व्यसनमा फस्ना बचैना अभिभावक नै जिम्मेवार हुई पर्ना बतैती बाल बालिका संगे अभिभावक हुकरण फे सचेतना के कार्यक्रम संचालन गर पर्नामा जोड़ दिले बाटै। औरा अभियन्ता सोनू चौधरी बजनगर पालिकामा बाल विवाह आत्महत्या विद्यालय छोड्न दर जैसिन समस्या रहल बतैती बाल कोषमा रहल रकम खर्च हुने सेकलक बारे जिज्ञासा धर रहे। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख विष्णु न्यौपानी विद्यालयमा विपद के समेत पाठ्यक्रम बनेना आवश्यक रहल बतैठी विपद पूर्व सूचना और जलवायु परिवर्तन के विषय है नीतिमा समेत पर्न बतोले बाटै। कार्यक्रममा वाडा सदस्य बीमा देवी बीका विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष राजू थारू अभियन्ता खेमा कठायत अभिभावक सुनिता कुमारी चौधरी लगायत से बाल बालिका संबंधी आवश्यक नीति निर्माणमा निर्णयमा नगरपालिका से जोड़ दिए पर्ना सुझाव दिले बाटै। ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल के सहयोग तथा यार्ड धनगढ़ी के आयोजना में संवाद कार्यक्रम हुई लखो कार्यक्रम के सहजीकरण पत्रकार ईश्वर साउट कर रहे। खोजखर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय कंचनपुर को विद्यार्थी भर्ना संबंधी सूचना
2: सिटी भिटी सम्बन्धन प्राप्त महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कंचनपुर में न्यूनतम शुल्क में प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अध्यापन कराने शैक्षिक सत्र 2083-84 का लगी 3 वर्ष प्रमाण पत्र तह मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी CMLT 30 जना सामान्य चिकित्सा HA 40 जना नेत्र विज्ञान OA 40 जना डिप्लोमा इन फार्मेसी DPH 40 जना विद्यार्थी को अनलाइन फर्म खुले सहर्ष जानकारी कर
1: भर्ना कार्यक्रम
2: अनलाइन आवेदन फारम वितरण शुरू 29 गते देखि
1: अनलाइन आवेदन फारम को अंतिम मिति जेठ 13 गते बुधवार
2: आवेदन फारम शुल्क ₹1000 मात्र अनलाइन आवेदन फारम www.ctvt.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नु पर्नेछ। अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि SA का कागज पत्र ल्याई शिक्षालय मा भर्न सकिनेछ।
1: आवश्यक कागज पत्रहरू
2: SEE SLC उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकलबाट स्क्यान गरिएको प्रति
1: जन्म दर्ता नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र स्क्यान प्रतिलिपि
2: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि
1: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हर सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
2: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा सो स्थानीय तहको सिफारिस
1: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर
2: सम्पर्क नम्बर 0969900044 98578004 98487-20247 97642-23921 र 98659963520।
3: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
4: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टीकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 98485818।
5: कर्णाली नमूना मावि टीकापुरमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 मा विभिन्न संकायमा भर्ना खुल्यो।
6: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजा सँगै शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 कानून होटल म्यानेजमेन्ट मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ। सिट सीमित छ, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
5: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी र खेलाड़ीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ।
6: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरका विशेषताहरू:
5: फराकिला कक्षाहरू,
6: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको,
5: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको,
6: खेलकुद सुविधा,
5: कम्प्युटर शिक्षा,
6: स्वच्छ पिउने पानी,
5: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
6: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली, सम्पर्क नम्बर 98584-24167।
7: तपाईको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री।
8: टीकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा सञ्चालन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना।
9: टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिकाभित्रका तपसिलका वडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, तपसिलको स्थान, मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। अस्तेरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 4, जेठ 5 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 2, जेठ 6 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
9: ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1, जेठ 7 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: एकनगर कार्य समितिको भवन, वडा नम्बर 1, जेठ 8 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
9: नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर 6, जेठ 10 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 9, जेठ 11 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
9: रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 3, जेठ 12 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीका

0: ठाकुर कैलाली।
1: विश्राम पाछि फेर से स्वागत बा। सरकार समग्रमा सहकारी के छोट बचतकर्ता के रकम फिर्ता गर्न शुरू गरल बा। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति से कालिक तीन थो सहकारी के 378 जान छोट बचतकर्ता उकरण के रकम फिर्ता गरल बा। समिति के अनुसार कान्तिपुर सहकारी के 215, शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी के 156, पशुपति सहकारी के सात जहन के छोट बचतकर्ता उकरण के बचत फिर्ता करल पागिल बा। कालिक पहिल दिन कम बचत हुईलक बचतकर्ता उकरण के रकम फिर्ता करल से फेन अब कर्मशः बचतकर्ता उकरण के रकम के आधार में वर्गीकरण करके सबको जहन फिर्ता करना भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल के सचिवालय से जनायल बा। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास गुन्द्रुमा कालिक सम्पन्न एमाले सचिवालय बैठक से पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के पार्टी के सदस्यता नवीकरण नै गर्ना निर्णय गरल बा। पार्टी के उपमहासचिव लेखराज भत्ता कालिक बैठक सचिवालय के बैठक से भण्डारी हे पार्टी के सदस्यता नवीकरण करना समेत निर्णय से वंचित करल बा। असंघक बैठक में सरकार से काम के समीक्षा पार्टी के सदस्यता नवीकरण हो विस्तार में पदाधिकारी तथा सदस्य उकरण के काम विभाजन के बारे में छलफल हुई बा। प्रधान न्यायाधीश सिफारिश हुईलक डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ऊपर के सांसदीय सुनवाई आज से शुरू हुई बा। एकलक आज बिहान के 8 बजे सांसदीय सुनवाई समिति के बैठक बैठ सकल बा। विधान व्यवस्थापन समिति के सभाकक्ष में बैठना बैठक में डॉक्टर शर्मा विरूद्व के परल उजुरी खोलना और सुनवाई संबंधी कार्ययोजना वितरण करना कार्यसूची रलक समिति के सचिव सवित्रा शर्मा जानकारी दिलबाट स्रोत के अनुसार वहां विरूद्व 7 थो उजुरी परल बा। चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्य कर्मी हुकरा नेपालमा आयोडिन के कमी हुइना जनस्वास्थ्य समस्या के जोखिम देखजिना खतरा बढ़लकमा गंभीर चिंता व्यक्त करती तत्काल आयोडिन विहीन नून बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइन सरकार के ध्यान आकर्षण करागिल बा। वहाँकुरा नेपाल भारत खुला सीमाना के कारण व्यापारिक सुपरमार्केट तथा खाद्यान्न पसलमा आयोडिन विहीन समेत भारतीय नून खुलाम खुला बिक्री हुई रलक चिंता व्यक्त करती आम उपभोक्ता उकरण के स्वास्थ्य में असर पुगैना रलक वर्षे ऐसी नोन हे बजार में अनुगमन करके जफत करना तीनों तह के सरकार संगे आग्रह करल बा। खोज खबर माए गरी फैंसे विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
2: जब जब गर्मी महीना आउँछ तब तब अमूल्य ब्रांड को आइसक्रीम को याद आउँछ। मैंगो लीची कोला स्ट्रबेरी कुल्फी चोकोबार चोको फनबार आहा हा कति मिठो मलाई त साह्रै मन पर्छ। यति मात्रै कहाँ हो र शुद्ध दूधले बनेको अमूल्य ब्रांड को आइसक्रीम को खोवा कुल्फी कर्नेटो र पार्टीहरुको लागि फैमिली पैक पार्टी पैक का सुविधा हुनुका साथै अन्य विभिन्न फ्लेवर का आइसक्रीमहरु र सादा आइस बलक पनि उत्पादन गरिन्छ। मैले त वर्षेनी खान्छु। अब खाने पालो तपाईको जुन ठाउँ जानुहुन्छ उही ठाउँ पाउनुहुन्छ अमूल्य ब्रांड को आइसक्रीमहरु। एकचोटि खोजी खोजी खाऊ है।
3: यदि तपाई अमूल्य ब्रान्ड का आइसक्रीमहरु बिक्री वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने धरौटी राखेर डीप फ्रिज उपलब्ध गराउने सुविधा रहेको छ। सम्पर्कको लागि बर्दादेवी डेयरी उद्योग टीकापुर 1 ब्लक नम्बर 13 सम्पर्क नम्बर 9854899455 र 9863969622।
2: रियल मिल्क रियल आइसक्रीम अमूल्य आइसक्रीम खोजी खोजी खाऊं ई ब्रांड का आइसक्रीम जहां पर उपलब्ध छ।
4: जानकी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना।
5: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हकको धारा 39 अन्तर्गत बाल बालिकाको व्यवस्था भएको र बाल

0: नमस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तुम्हें अब भी जाएं।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
3: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
2: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
4: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। हाल नेपाल मा पश्चिमी वायु स्थानीय वायु के प्रभाव रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा, जेकर प्रभाव से हाल कोशी प्रदेश लगायत के बागमती गंडकी ओ लुम्बिनी प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलती बा। बागमती ओ गंडकी प्रदेश के तराई तथा बाकी हिमालय पहाड़ी भूभाग में आंशिक मौसम बदलना बा। कलशी तराई भूभाग में मौसम मुख्यतया सफल रहना बा। कोशी ओ बागमती प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में कम स्थान में हल्का से लय के मध्यम वर्षा होती रहल बा। आज दोपहर के कोसी प्रदेश लगायत के बाकी हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलन बा। मध्य प्रदेश लगायत के बागमती और गंडकी प्रदेश के तराई भूभाग में आंशिक मौसम बदलन बा। आईसीसी विश्वकप लीग दुई अंतर्गत के कालीखुल खेल में नेपाल से स्कॉटलैंड ने 6 विकेट से पराजित करल बा। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में हुई खेल में स्कॉटलैंड ने 6 विकेट से पराजित कर संगे लीग में 27 खेल में 22 अंक जोड़ नेपाल पांचों स्थान में रहल बा। नेपाल यागे सातों स्थान में रह जीत के 195 रन के लक्ष्य पायल। नेपाल 38.1 ओवर में 4 विकेट के क्षति में 199 रन बनाईती लक्ष्य हासिल कर। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। विपद के समय में नैसर्ना रोग संबंधी सेवा प्राथमिकता देना पालिका के जोड़, आगामी वर्ष के नीति कार्यक्रम में समेटना पालिका प्रमुख उपकरण के प्रतिबद्धता। भजनगर पालिका के बाल बालिका संबंधी एन निर्बन के बाल मैत्री क्रियाकलाप करना समस्या, हाली एन बनैना नगर प्रमुख केवल चौधरी के कहाई। विद्यादेवी भंडारी के पार्टी सदस्य नवीकरण करना एमाले सचिवालय के बैठक के निर्णय, समस्याग्रस्त सहकारी के छोट बचतकर्ता उपकरण के रकम फिरता शुरू। ओ विश्वकप क्रिकेट लीग दुई में स्कॉटलैंड पर नेपाल के जीत। बकलक थाल भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी बिदा हुई। सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाक्रम सुनती।

0: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकारी गरौं।
1: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
2: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
1: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
2: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
3: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
4: ए भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन त भाउ, के पाउँछ त्यहाँ?
5: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
6: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
7: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
4: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
8: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला टेरस।
9: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला टेरस,
10: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
8: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 9844648673 र 9814680204।
11: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
12: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैसे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
11: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
12: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जाय से गए।
11: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।

0: नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड को 32 वार्षिक साधारण सभा तथा सो सभाले गर्ने संस्थाको नयाँ कार्य समितिको निर्वाचन समेत निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकाले संस्थाका सम्पूर्ण शेष सदस्य महानुभावहरूलाई संस्थाको शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकारले प्रमाणित गरी जारी गरेको फोटो सहितको परिचय खुल्ने कागजातका साथ उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। मिति 2083 जेठ 9 गते शनिबार, समय बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म, स्थान ओम प्यालेस धनगढ़ी कैलाली, नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली। विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091520283।
1: ओहो त हेर बुढिया, बर्खाक समय थेबा पखारिक मुहका रुपकल बाकी मुसवा आयल कलश आब मुसवा खुस्ती सब अफे आई सक था।
2: ओहो हो निका साक्ष समझनो घरक अंदर पादर झसास थे बाहर तक अच्छा का तहिल बा काटा पर ना रह।
1: हाँ असी करी हेर बुढिया, वो सिंह कलश से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका कर बासी खाई, दूसरा सर परिवार मने मिलकर सर सफाई कर दी, दूसरा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन कर दी तो नहीं हुई।
2: हुई था वो गुरुवा असिन जाला मदर ध्यान घास फोहर झफास भी था उमा साप नुख का बैठल रह सकता ना।
1: वो हो उससे तक कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू वो मई मिलकर घर आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे थे घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुकर थे सांप मुस्कुसू के पैठनी सेकना में तो चबरदार पड़ा। दूसरा घर आंजर पांजर फसफार वो सफा हुई लसे साफ पहना था उस तरह कम हो जाए
2: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुसक थे बा
3: सात बरखा छागक समय मा सुखा ठामा बैठा मन परै छ। ई मौसम मा आपन बस्यारा मा पानी पैसना पिला कोर्से सुखा ठाउँ का खोजी मा ओकरा बाहिर निस्कठ।
4: मुस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम मा फेर साँप मानव बस्ती लघ आइसक छ।
5: विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केन्द्र कहाँ बा कैथ पट्टा लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहे सक्दै छ।
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार बुधवार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: कब्बू का पिए रही था कब्बू पेंसिल रही था कब्बू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा की ओस्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था कब्बू पेंसिल हेरा कई था कब्बू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनला बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पी रही थी ना कब्बू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरहक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: ला फिर यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कई समस्या बैटरी कई समस्या यो टीकापुर में पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेंशन में भाई मत अब
4: भाई थाई रही ना बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकिल लगाये सोलर इन्वर्टर में लगने बैटरी पनी सुपट मूल्य में टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्य में पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुर में पनी पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाई टीकापुर जमरा पारी छ नि संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
1: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको दुई वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
5: हामी कहाँ सियाट एपोलो भी रबर ब्रांड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबी मा लाग्ने सम्पूर्ण साइज का टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ संजय ट्रेड एंड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: संपर्क नंबर 091560470 र मोबाइल नंबर 9848528

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे भुवाज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने न पट्टा नि पैना त
1: अधि गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना टु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन लबाटी
1: ए ले ले ठिके बा चल हाली भाटवट खाइ आउ जाइका हुँ सामुएल ज्वेलर्स मे गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41 208 और 98486 39 261

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के होस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर भर आई थी रहत।
0: का हुई कब्बू लड़का कभी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी, ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कब्बू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहीं एक आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: नवजीवन सहकारी संस्था के 32वां वार्षिक साधारण सभा संबंधी सूचना। नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड के 32वां वार्षिक साधारण सभा तथा ऊ सभा से कई जिना संस्था के नया कार्य समिति के निर्वाचन समेत निम्न मिति समय ओ स्थान में हुईना हुईले कोर से संस्था के संपूर्ण शेष सदस्य महानुभाव हुक्र संस्था के शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कई गिल फोटो सहित के परिचय खुलना कागजात के साथ उपस्थित हुईकला हार्दिक अनुरोध करती। मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार, समय बिहान के 8 बजे से संध्या 5 बजे सम, स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली, नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क नंबर 091520283।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य मा बीसी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz शिव तरंग मार्फत कार्यक्रम अन्ताक्षरी अपन के लक्ष्य आश्रय राख के बैठक सक्कु सक्कु रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह स्वागत के संगे अभिवादन कर चाटो मिशन अमी क्या भाई टेक में बैठ के साथ देहतई भाई आकाश चौधरी और मई बाटो अपनी क्या संग्रह मैं मिशन संघारी कसिन बहाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई भी मैं एकदम आराम हुई बटो अपने एकदम आराम हुई भी कना भरपूर आसने बाटो जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में बिप्याल में यात्रा में जहां रहे से फिर कार्यक्रम में सहभागी जनैबी कन में अपने आज कर्म कहे कि ये कार्यक्रम अपने हुकन के लग नहीं हो अपने हुकन के संगे संगे रमाइलो करना हो विशेष करके अंताक्षरी खेलना विशेष करके गीत गाना रुचि रहल शौक रहल सगार के हमन कर करबी क साइकिल से क का की कुकू के असाइकिल से अ आ ई ई उ ए आई कोई भी अक्षर से अंताक्षरी खेले लगाइबी तीन चोट अपने गेबी तीन चोट में गेम थारो नेपाली भोजपुरी गीत अपने गाई सक थी अंताक्षरी खेलबे तीन चोट अपने तीन चोट में अपने गाल गीत मई नहीं गाई पाइना मोर गाल गीत अपने गाय पाइना अपने कमर गायल गीत तेसरो पर्सन के कलर गायनी पाइने चाहिए कार्यक्रम के नियम हो यह नियमित रह के कार्यक्रम में सहभागी जन ऐटे करी कार्यक्रम में ऐटे करी साथ में मजा मजा गीत संगीत तो मैं सुने नहीं बाटू तो कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश करब एक रमाइलो गीत से गीत के पास समय नहीं बाटू डायल करते करी 091-5-61-265 के लाइन खुल रही बा डायल करते करी तब सबके लगे एंजॉय करी रमाइलो गीत

बिल्कुल ही रमाइलो गीत कार्यक्रम में जोरली कार्यक्रम मैं मिशन में के साथ देते ही भाई आकाश चौधरी अगे कोई बात नहीं हो कार्यक्रम में चाहिए सहभागी जनता कर भी सुने 91-565-255 अथवा 09-1-56-125-5 लाइन एकदम खुला बा कार्यक्रम में सहभागी जनता कर भी के नाम अर्जी करना चाहम। ये दोपहरिक समय हो दोपहरिक समय है अलसी समय है कुछ सत्सम रमाइलो कार्यक्रम अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता थी कहे कि ई कार्यक्रम में विशेष करके गीत गायन इच्छा रहा रुचि रहा सब रहा सहकारी हम कल करे पर्ना रहत ओकलक हमने लाइन खुला कैले रही शून्य 91-561-2255 हरेक अथवार के सोमवार मंगलवार बुधवार बिहार हमने 4 दिनसम रेगुलर 1 बजे से करीब 1:45 बजेसम हमने अपने हुकन के संगे आई ठेका नाम जानकारी करती बारू तो कार्यक्रम में आईटे करबी सहभागी जनईटे करबी अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता थी कोई टेलीफोन लाइन में आल बात बोल करना चाहम के हुई हजुर राम राम ओ टेलीफोन लाइन में शायद वहां संपर्क में नहीं होंगे लागत में ओके कार्यक्रम में सहभागी जनते कर भी कार्यक्रम में आईटे कर भी अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता रही रमाइलो गप रही कार्यक्रम में भी कल से अपने को हमारे करीब करीब 1:45 बजे से यात्रा करे पड़ल गर्मी के महीना में संगारी घाम बा घाम में एकदम ही मैं कहा अपने को घाम में एकदम ख्याल करके काम कर भी काम तो करे पड़ल काम नहीं कर भी तो कसी के बनी ना काम हमरे काम नहीं करब कल से तो आईना डगरे नहीं भी आईना डगर नहीं भी तो हमारा कसी के जिया कसी के अपन आवश्यकता पूरा करब 2 रूपया आयक लग तो हम काम करे पाना एकदम जरूरी बा तो इस अपन शरीर है स्वास्थ्य है ख्याल करके सही काम कर भी करना कहे मतलब हम अपना जोर के घाम करत की ताकि हमें काम करबो पसीना देव निकल जाए शरीर से कि हमन पटे नहीं चलत हमारे शरीर में पानी के कमी हुई सकत पानी के कमी हुई थी कि हमार थन बहुत ढेर समस्या रे देखा पड़ना रह तो वो समस्या है फिर समाधान करे पड़ना एकदम जरूरी हमारे स्वास्थ्य नहीं रहा तो काम फिर तो कर नहीं सक जाए कि कस दिन वो हमारे पानी एकदम ढेर पीबी सक बेकार से जत्र ही पानी पीबी उत्र ही फायदा रही मजा रही तरह बिसा बिसा पानी पीटी कर भी कनम चाहम एक दिन में लगभग सेक भी कल से 5-7 लीटर पानी पिए बीटा और मजा रही कहे कमती में अपने 1 लीटर पानी पीना मन लगे कल से आजकल जस्ते 1 लीटर पानी पीबी तो 1 घंटा मन बिसा बिसा पीबी जस्ते पानी पीनू कल से बिल्कुल सक्कू जगे खसियालू कना में रखना है कि एक एक चोटी जस्ते 1 पाव पी ली कल से फिर बिसा ली 1 घसी पास फिर 1 पाव पी फिर 1 घसी पास 1 गिलास और पी फिर 1 गिलास मतलब 1 घंटा में 1 लीटर पी बीटो फिर बहुत मजा होगा कहे कि एक सिरते पानी पी ले बीटो हम वो पानी के फायदे नहीं रहते सब तो से पानी पी ले सब तो से पानी हमारे पिशाब के माध्यम से बाहर निकाल देबो वो चीज चाहिए शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हुई पाए का तब हमारे शरीर में काम लगना पानी पिया पड़ना एकदम जरूरी रहो कि कैसे काम लगाए लग हम धीरे धीरे पानी पिया पड़त शरीर में जो पानी कामे नहीं करी तो पानी पी के फिर फायदा नहीं रही कहती कार्यक्रम में फैन से जोड़ा गीत के पास मैंने बात डाल करते कर भी सुन 91-561-255 लाइन खोले बा तब तो संग रमाइलो गीत गीत के पास में इन्हें बढ़ू

0: हजुर बिल्कुलै रमाइलो सजना गीतके पाछ फेन्स स्वागत कहिन चाहम। एकदमै रमाइलो हमार लगभग लगभग यी सजना गीत आफ्नो सुनली। यी गीत चाहिँ विशेष गरके जेठ महिना से लेके वैशाख महिनासम्म लगभग पूरा महिना के मतलब रहस्य रहल इतिहास रहल मतलब सन्देश भरल गीत चाहिँ गायक कलाकार सम्मति थारू और देश रासत गाउँमा गई नै गीत एकदमै मजा गीत रहे आफ्नो एकदमै मन पर्ल का नाम है भरपूर आशाहरू। अब तिमी हामी व्यापारिक विषय लेना बेला सर्ट कमर्सियल ब्रेक और जाए ब्रेक के पास में बाटू रेडियो सरकार कहाँ पर नहीं तब संग एक खेती व्यापारिक विश्राम विश्राम के पास में एने बाटू
1: मुर्गी दाना देना जाला मैं सातर लक्ष्य खादा जी अपना
2: एक तो सपा का मुर्गी में फारक है लत्ती से डुरेले से बक्सा की आनो हारी छत्ता
1: तापन घिसकाई चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस क्या कर बेन घर भीतर आए लागी कल से भगेगी
2: फारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी व खादी कहीं का भगाए खुद लखो का
1: आरा मैं कीड़ा फटिंगा मुँह साफ सुर निशा कर कहीं फलाम को जारी लगा पाता सपा मुर्गी खेती बुगाई नहीं सेखी बेन अपना दाठी डूर बिना।

0: वा निजिस्के साप मनें डेख डरे था निचला खा दूर रमसिल साप नी दस्त तर हुक्र खैना फाज बाहिर निस्क जनाब खास काटे बे छाले बे ज्ञानद बे छुबे गसे मनै मही मारकलाट बाट कना सबसक पट्टी र छकना क्रम म साप दस लाख रठ मनै सापन व्यक्ति की मारकला रठ ओसिक करबे फे साप दस लाख रठ
1: सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लंघक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेभिथा
2: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आज था, का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हराए।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत फिर करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत सुन्दै सुन्दै लभलभ कार्यक्रमको निर्धारित समय डगर काटे लागल डाटा बाबेक एकजना बेला होगिल बत्ता मारा त्रबटल सन रेडियो सुनके साथले आफ्नो सकुजन धन्यवाद टेक्नो बेटके साथ भाइ आकाश चौधरी पे धन्यवाद दिदी अन्तिम एक ठोट रमाइलो गीत छ त्यो कार्यक्रममा भेट्न बाचा कृतिमा बिसनाका छौँ राम राम जयदेव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपकेबाट शुभ रहे रेडियो टिकापुर एफएम सुन्टे रवि जहाँ रवि जहाँ रवि जयसिंह रवि स्वस्थ रवि व्यस्त रवि खुशी रवि आराम रवि कना जानकारी गति कार्यक्रम समय बिदा हुँ राम राम जयदेव जय गुरु बाबा शुभ दिन।

0: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
1: जेठ 16 गते शनिवार का दिन
2: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
2: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोच आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
1: डाक्टर आउने दिन जेठ 16 गते शनिबार।
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80008 र 9825 73 77 72।
4: नवजीवन सहकारी संस्था के 32 वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना। नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड के 32 वार्षिक साधारण सभा तथा ऊ सभा से कई जिना संस्था के नया कार्य समिति के निर्वाचन समेत निम्न मिति समय ओ स्थान में हुई न हुई लेकर से संस्था के संपूर्ण शेष सदस्य महानुभाव होकर संस्था के शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कई हिल फोटो सहित के परिचय खुलना कागजात के साथ उपस्थित हुईकला हार्दिक अनुरोध करती। मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार, समय बिहान के 8 बजे से संध्या 5 बजे सम्म। स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली। नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली। विस्तृत जानकारी के लग संपर्क नंबर 091-520-283।

0: नवजीवन सहकारी संस्था के 32वां वार्षिक साधारण सभा संबंधी सूचना। नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड के 32वां वार्षिक साधारण सभा तथा उ सभा से कई जिना संस्था के नया कार्य समिति के निर्वाचन समेत निम्न मिति समय ओ स्थान में हुईना हुईले कोर से संस्था के संपूर्ण शेष सदस्य महानुभाव हुक्र संस्था के शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कई गिल फोटो सहित के परिचय खुलना कागजात के साथ उपस्थित हुईकला हार्दिक अनुरोध करती। मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार समय बिहान के 8 बजे से संध्या 5 बजे सम स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क नंबर 091-520-283।
1: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौ।
2: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
3: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
2: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
3: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
4: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584-89213। इमेल ocmcticapur@gmail.com।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सन्धिक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोलाप सम्रपात्र नेपाली पात्र मफे सुन्ति हलवाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से कर्णाली मावि टीकापुर शैक्षिक सत्र 2082 में कक्षा प्रथम दोसरो तेसरो हिना विद्यार्थीगण पुरस्कार वितरण। नुआनफे गुणस्तरीयहीन आयोडीनविहीन नुन बिक्री रोक्ना माग। भगोको आक्रमण से वन हिरालो घाइते। वन नेपाल द्वारा स्कटल्याण्ड 6 विकेट से पराजित। पूरा खबर कर्णाली मावि टीकापुर शैक्षिक सत्र 2082 कक्षा प्रथम दोसरो तेसरो हिना विद्यार्थीगण पुरस्कार वितरण कलाबाट कक्षा म प्रथम दोसरो तेसरो हिना विद्यार्थीगण बिहान के प्रार्थना हुलक आज बोलाके पुरस्कार वितरण कलाबाट ओस्तंकरकै कर्णाली माध्यमिक मसे कक्षा 10 एसमा 3.6 GPA से उपलना 10 जना विद्यार्थीगण पुरस्कार हो। खाँदा लगाएकी सम्मान कलबाट सम्मान कति प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्मा सक्कु यासी उत्तीर्ण विद्यार्थीगण बधाई दिलबाट सम्मान लिटी विद्यार्थी कुरा कर्णालीमा रहलक सक्कु चरित्र निर्माण मध्य सहयोग मिलक बोटेटी विद्यालय परिवार सदस्य।

0: सुनौली म आफ्ना बैरागले गाउँछु बस आछ भनौले
1: काठे सागो चुनुक चुनुक जुत्ता भड्कुनाले मेरा ताई पराया भया।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्रेक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
4: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमे जाइस् तो?
5: मै नै जाइ, उहाँ आफ्न अनुहार बिगारके घर से बाहर नै नै गर्छु।
0: उहे मारे तो तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकलमे अब छाला सम्बन्धी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डाक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादो, अपन अनुहार बिगारके परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
7: सम्पर्क मनिष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।

0: Android download गर्नुहोस् नेपा एप
1: पाली मनको नेपाली पनको
2: नवजीवन सहकारी संस्था के 32वां वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना। नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड के 32वां वार्षिक साधारण सभा तथा ऊ सभा से कई जिना संस्था के नया कार्य समिति के निर्वाचन समेत निम्न मिति समय ओ स्थान में हुई न हुई से संस्था के संपूर्ण शेष सदस्य महानुभाव र संस्था के शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कैगिल फोटो सहित के परिचय खुलना कागजात के साथ उपस्थित हुईकला हार्दिक अनुरोध करती। मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार समय बिहान के 8 बजे से संध्या 5 बजे सम स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली। विस्तृत जानकारी के लग संपर्क नंबर 091 520 283।

0: रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गिरा संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको साधारण सभा सम्बन्धी जरूरी सूचना। रानी जमरा कुलरिया स्थित भण्डार गिरा संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टिगापुर कैलालीको पहिलो साधारण सभाको बैठकको गणपूरक संख्या नपुगी तपसिलको मिति स्थान र समयमा पुनः बस्ने भएकाले पूर्ण पार्षदज्यूहरूलाई आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात सहित यसै सूचनालाई आधार मानेर साधारण सभामा अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। साधारण सभा हुने मिति 2083 साल जेठ 10 गते आइतबार। कार्यक्रम हुने स्थान मूलकुला समितिको सभाहल, समय बिहान 10 बजे। सम्पर्क नम्बर 0915161022। रानी जमरा कुलरिया सिट भण्डार गिरा संचालन तथा व्यवस्थापन समिति टिकापुर कैलाली।
1: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल।
2: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो नि करत का कैन हो का
1: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो न, पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्रफे पटानी हुइन कि गुङ्गुवा बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
0: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट। मोबाइल नंबर 9848541436।
3: दाजु हेर्नुहोस् न, भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराख्या छ, तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ। भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु।
4: के गरौ त म, यत्रो उपचार गरिसके, कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न।
3: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सरकार मेडिकल सेवामा जताउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि।
4: तैले भन्छस् भने लौ जाम न त त्यो सरकार मेडिकलमा एकपटक।
5: सबका मेडिकल सेवा का खास सेवाहरू ओपीडी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, ल्याब अर्थात प्रयोगशाला सेवा, ईसीजी सेवा, मेडिकल सेवा, ईएनटी सेवा, प्लास्टर सेवा। बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टिकापुर ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर। फोन नम्बर 0915600095। मोबाइल नम्बर 9844247359।

0: 70622।
1: रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम, अमूल्य आइसक्रीम खोजी खोजी खाऊं। यी ब्रांड का आइसक्रीम जहां पनि उपलब्ध छ।

0: राम ई लड़का के कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटाका था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला जस कटरस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड को 32वां वार्षिक साधारण सभा तथा सो सभाले गर्ने संस्था को नया कार्य समिति को निर्वाचन समेत निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकाले संस्था का संपूर्ण शेष सदस्य महानुभावहरूलाई संस्था को शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकारले प्रमाणित गरी जारी गरेको फोटो सहित को परिचय खुल्ने कागजात का साथ उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। मिति 2083 जेठ 9 गते शनिबार समय बिहान 8 बजे देखि बेलुका 5 बजे सम्म स्थान ओम प्यालेस धनगढ़ी कैलाली नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली विस्तृत जानकारी को लागि संपर्क नंबर 091520283। टीकापुर नगरपालिकाको स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी जरुरी सूचना
4: नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा यही मिति 2083 साल वैशाख 28 गतेदेखि जेठ 3 गतेसम्म मूल्य पारदर्शिता सप्ताह मनाइरहेको बिहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ।
5: टीकापुर नगरपालिकाबाट गरिएको नियमित बजार अनुगमनको क्रममा एक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यापार व्यवसाय पसल होटल रेस्टुरेन्ट औषधि पसल किराना लगायतका व्यवसायहरूमा बिक्री गरिने वस्तु तथा सेवाको मूल्य सूची राखेको नपाइएको हुँदा प्रत्येक व्यवसायीले बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट र अध्यावधिक मूल्य सूची सबैले देख्ने स्थानमा अनिवार्य रूपमा राख्न हुन सूचित गरिन्छ।
4: प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
6: बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट मूल्य सूची उपभोक्ताले सजिलै देख्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ।
4: उपभोक्तालाई खरिद गरेको वस्तुको बिल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
6: म्याद नागेका गुणस्तरहीन तथा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन।
5: बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट मूल्य सूची उपभोक्ताले सजिलै देख्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ।
4: खाद्य तथा उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीले सरसफाई तथा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ।
5: कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कालोबजारी गर्ने तथा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने कार्य गर्न पाइने छैन।
4: व्यवसाय स्थल वरपर सफा व्यवस्थित तथा सुरक्षित वातावरण कायम राख्नुपर्नेछ।
5: बजार अनुगमनको क्रममा आवश्यक कागजात दर्ता प्रमाण पत्र खरिद बिल लगायतका विवरण अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
4: नगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएका निर्देशिका मापदण्ड तथा नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ।
5: प्रस्तुत मापदण्डको अनिवार्य रूपमा पालना नगरेमा प्रचलित नियमानुसार भइजाने बिहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ। टीकापुर नगरपालिका

0: काहुल कमल आइने बुखाइल बाटो त
1: हेरी न काका आई फुला टुरे बारी मा गेल रही तबो का देली बीस निकाल देवी की कह के लेके आयल बाटो
0: सबको कटलक बीस तक उपचार कर सर्वदम से उपचार केंद्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तारीफ प्राप्त चिकित्सक हूँ बिखार सबको कटलक हो कि नहीं हो के पता लगा कर सर्वदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी वेनम से उपचार कर
1: सर्पदंग से उपचार केंद्र के विषय में मैं फिर सुनल तो रहूं तर
0: कुछ दिन कही आना तुरंत उपचार केंद्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी वेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था प्रत्येक चिंता नहीं पड़त
1: खाई ना तब ना ट्रेन कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात
0: एम्बुलेंस आपूंगा समय लगा के था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी रे बाबू संदेश बाहर आता
2: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमेन का समय में जो उपचार के खा जैन जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केंद्र संचालन में बा ई उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटी वेनम निःशुल्क उपलब्ध करेला बा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र संपर्क नंबर धरल पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेटा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: टिकापुर नगरपालिकाको स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी जरुरी सूचना
5: नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा यही मिति 2083 साल वैशाख 28 गतेदेखि जेठ 3 गतेसम्म मूल्य पारदर्शिता सप्ताह मनाइरहेको बेहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ
4: टिकापुर नगरपालिकाबाट गरिएको नियमित बजार अनुगमनको क्रममा एक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यापार व्यवसाय पसल होटल रेस्टुरेन्ट औषधि पसल किराना लगायतका व्यवसायहरूमा बिक्री गरिने वस्तु तथा सेवाको मूल्य सूची राखेको नपाइएको हुँदा प्रत्येक व्यवसायीले बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट र अध्यावधिक मूल्य सूची सबैले देख्ने स्थानमा अनिवार्य रूपमा राख्न हुन सूचित गरिन्छ
5: प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ
6: बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट मूल्य सूची उपभोक्ताले सजिलै देख्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ
5: उपभोक्तालाई खरिद गरेको वस्तुको बिल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ
6: म्याद नागेका गुणस्तरहीन तथा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन
4: बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट मूल्य सूची उपभोक्ताले सजिलै देख्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ
5: खाद्य तथा उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीले सरसफाई तथा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ
4: कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कालोबजारी गर्ने तथा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने कार्य गर्न पाइने छैन
5: व्यवसाय स्थल वरपर सफा व्यवस्थित तथा सुरक्षित वातावरण कायम राख्नुपर्नेछ
4: बजार अनुगमनको क्रममा आवश्यक कागजात दर्ता प्रमाणपत्र खरिद बिल लगायतका विवरण अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्नेछ
5: नगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएका निर्देशिका मापदण्ड तथा नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ
4: प्रस्तुत मापदण्डको अनिवार्य रूपमा पालना नगरेमा प्रचलित नियमानुसार भइजाने बिहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ टिकापुर नगरपालिका कार्यालय